0: जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता में भारत पहले स्थान पर। रिजर्व बैंक ने कहा भारत में सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में वर्ष 2025-26 में वार्षिक आधार पर 8.2% की वृद्धि और 20वें एशियाई खेलों का शुभारंभ आज से जापान में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर वे नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: 20वां रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसके तहत नवनियुक्त कर्मचारी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य करेंगे। इनमें वित्त, रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रक्षा मंत्रालय शामिल हैं। इस 20वें रोजगार मेले के साथ ही लगभग 12,75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। रोजगार मेला युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और देश की विकास यात्रा में उनकी ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने पर सरकार के लगातार ध्यान को दर्शाता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ और सर्वोच्च, उच्च तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश और विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। सम्मेलन में 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। ये सम्मेलन न्यायिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक ज्ञान, पर्यावरण से जुड़ी सुशासन प्रक्रियाओं और संस्थागत अनुभवों के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करेगा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। बैठक के बाद श्री संजय जायसवाल ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और सदस्यों ने कई प्रश्न उठाए।
2: बहुत ही अच्छे से कॉर्डियल वे से पूरी मीटिंग चली। सभी सांसदों ने अपने अपने प्रश्न पूछे। हमें मैंडेट यही मिला हुआ है कि विंडो सेशन से पहले हमें अपनी रिपोर्ट दे देनी है, हम निश्चित देने में सफल हो जाएंगे। होम मिनिस्ट्री के तरफ से ब्रीफिंग थी। जाहिर बात है कि पहली ब्रीफिंग हमेशा डिपार्टमेंट की होती है, तो जो पेरेंट डिपार्टमेंट है उसने अपनी सारी ब्रीफिंग की।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नोएडा, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े राज्य के 8 सीमावर्ती जिलों में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद श्री यादव ने बताया कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य योजनाओं पर चर्चा की गई।
3: व्हीकल पॉल्यूशन को लेकर जो ओल्ड व्हीकल है उनको निदान किया जाए, नई ईवी पॉलिसी में बसों की हमने समीक्षा करी, उसके साथ ही प्रदूषण सर्टिफिकेट की अनिवार्यता के विषय पे हमने करी, एग्रीगेटर वाहन है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी और व्हीकल पॉल्यूशन को लेकर के क्या और प्रभावी कार्य किए जा सकते हैं उसकी समीक्षा करी। इस क्षेत्र में आने वाला जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है उसमें हमने देखा है कि 80% इंडस्ट्रीज ने OCMs और APD जो है वो लगा ली है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनका जीवन जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ा रहा है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के इन प्रयासों से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। इसी कड़ी में प्रस्तुत है वर्ष 2020 से शुरू हुई भारतीय अंतरिक्ष

0: नीति पर हमारी विशेष श्रृंखला
1: स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स की वजह से स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी सुधार देखा जा रहा है। आईआईटी मद्रास के इंजीनियरों की टीम द्वारा शुरू किए गए स्पेस स्टार्टअप गैलेक्स आई इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इस स्टार्टअप ने दुनिया का पहला एप्टो एसएआर सैटेलाइट मिशन दृष्टि विकसित किया है। गैलेक्सी आई के सीईओ और को फाउंडर सूर्य सिंह ने आकाशवाणी से खास बातचीत में स्पेस सेक्टर में हुए सुधारों के फायदों के बारे में बताया है।
2: सरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आरएनडी और ज्यादा फंडिंग के जरिए इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है। इसमें 1000 करोड़ रुपए का स्पेस सेक्टर वेंचर कैपिटल फंड और स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसी पहल शामिल है। इससे हमारी जैसी नई कंपनियों को मुश्किल चुनौतियों का सामना करने, भारत में अहम टेक्नोलॉजी विकसित करने और भारत के स्पेस प्रोग्राम को अगले चरण में ले जाने के लिए सार्थक योगदान का आत्मविश्वास मिलता है।
1: गैलेक्सी आई के सीईओ सूर्य सिंह का कहना है कि स्पेस सेक्टर में हुए सुधारों ने प्राइवेट कंपनियों और इंडस्ट्रीज के लिए वैल्यू चेन के रास्ते खोल दिए हैं। साथ ही इन स्पेस इंडस्ट्री को मंजूरी दिलाने और इसरो की सुविधाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्निकल जानकारी तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। इससे हमें सैटेलाइट सिस्टम और मिशन ऑपरेशन के क्षेत्र में अपनी इन हाउस क्षमताएं बढ़ाने में भी मदद मिल रही है। इसके अलावा सरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आरएनडी और जरूरी फंडिंग के जरिए इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है, जिसमें स्पेस सेक्टर वेंचर कैपिटल फंड और स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसी पहल शामिल है। उन्होंने कहा कि नई कंपनी के लिए इससे मुश्किल चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी और भारत में जरूरी टेक्नोलॉजी विकसित करने और भारत के स्पेस प्रोग्राम के अगले चरण में अहम योगदान देने में भी मदद मिल रही है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते को गति देने के लिए बैठक की। दोनों पक्षों ने बातचीत में तेजी लाने और जल्द से जल्द समझौते को अंतिम रूप देने की अपनी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते से वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, निवेश तथा आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्रों में नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। भारत को स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया के नवीनतम बिजनेस क्लाइमेट सर्वे में 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला है।
3: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत का कारोबारी माहौल स्थिरता, विकास और कारोबार सुगमता के लिए नया मानक स्थापित कर रहा है। ग्लोबल बिजनेस क्लाइमेट सर्वे 2026 में 41 बाजारों के बारे में जानकारी दी गई है। ये सर्वेक्षण विदेशों में कारोबार करने को लेकर स्वीडिश कंपनियों के अनुभव और दृष्टिकोण को सामने रखता है। इसका उद्देश्य प्रमुख स्वीडिश निर्यात बाजारों में आर्थिक प्रदर्शन, कारोबारी संभावनाओं और कामकाज की परिस्थितियों की तुलना के लिए एक आधार उपलब्ध कराना है। समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल।
0: वर्ष 2025-26 में भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात वार्षिक आधार पर 8.2% बढ़कर 221 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। रिजर्व बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा निर्यात पर जारी वार्षिक सर्वेक्षण में यह जानकारी दी गई।
2: वार्षिक सर्वेक्षण के लिए 7,569 सॉफ्टवेयर निर्यात कंपनियों से संपर्क किया गया था, जिनमें से 2,363 कंपनियों ने जवाब दिया। कुल अनुमानित सॉफ्टवेयर निर्यात में इन कंपनियों की हिस्सेदारी लगभग 89% थी। पिछले वर्ष के दौरान भारत में कुल सॉफ्टवेयर निर्यात में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी बीपीओ सेवाओं का हिस्सा सबसे ज्यादा रहा था। भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए 54% से अधिक की भागीदारी के साथ अमरीका सबसे बड़ा केंद्र बना रहा। 31.8% के साथ यूरोप दूसरे स्थान पर था। ब्रिटेन की हिस्सेदारी 15.4% थी। रिजर्व बैंक ने यह भी बताया कि भारतीय कंपनियों की विदेशी सहयोगी कंपनियों का स्थानीय सॉफ्टवेयर व्यापार वर्ष 2025-26 में 14 अरब डॉलर से बढ़कर लगभग 18 अरब डॉलर हो गया। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मौसम विभाग ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने पूर्वी राजस्थान, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, केरलम और माहे में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, असम

0: मेघालय उत्तर आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप में गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज शाम उत्तरी अंडमान सागर और उससे सटे इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से 22 सितंबर के आसपास ओडिशा में खासकर दक्षिणी हिस्सों में वर्षा की संभावना बढ़ सकती है।
1: बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के कारण इस महीने की 22 तारीख के आसपास उड़ीसा में फिर से बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि ये सिस्टम आज शाम के आसपास उत्तरी अंडमान सागर और उसे सटे इलाकों में बन सकता है। उम्मीद है कि ये धीरे धीरे और मजबूत होगा और अगले 3-4 दिनों में पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए दक्षिण उड़ीसा उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों की तरफ बढ़ेगा। जैसे जैसे ये सिस्टम तट के करीब आएगा दक्षिणी उड़ीसा में बारिश बढ़ने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि अमेरिका ने ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने के लिए डेनमार्क के साथ समझौता किया है। इसके साथ ही ग्रीनलैंड को खरीदने की ट्रंप की बार बार की मांगों को लेकर महीनों से चल रहा तनाव समाप्त हो गया है। समझौते के अंतर्गत ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार बना रहेगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इस समझौते से अमरीका को ग्रीनलैंड में सुरक्षा और अन्य सभी जरूरतों पर स्थायी नियंत्रण मिल जाएगा। जापान के आइची नागोया में 20वें एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन आज भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजुहो स्टेडियम में होगा। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और शॉटपुट खिलाड़ी तजिंदर पाल सिंह तूर उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। एशियाई खेल आज से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। भारत के 500 से अधिक खिलाड़ी 37 खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: जी विशाल, तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों को नए नाम और चुनाव चिन्ह आवंटन आज के अधिकतर अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, ममता को दोहरा झटका, बगावत के चलते निर्वाचन आयोग ने पार्टी का चुनाव चिन्ह किया जब्त। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, बंगाल में खेला तृणमूल में अब फुटबॉलर वर्सेस लिफाफा। पंजाब केसरी का कहना है, निर्वाचन आयोग का यह फैसला, दो उपचुनावों के लिए अंतिम निर्णय बाद में। दो न्यायाधीशों की पीठ जाएगी एनटीए मुख्यालय। जनसत्ता के अनुसार एनटीए मामले की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा, सुधारों को देखने के लिए खुद जाएंगे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी। पीठ ने मामले में मांगी है प्रगति रिपोर्ट। वायुसेना को तेजस की मिली अंतिम खेप। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने भारतीय वायुसेना को 20 तेजस विमानों की डिलीवरी का अनुबंध पूरा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, युद्ध की बदलती तस्वीर को देखते हुए स्वदेश में विकसित प्रौद्योगिकी समय की मांग। रेटिंग एजेंसियों मूडीज और जेफरीज ने भारत का ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर किया 7%। दैनिक भास्कर लिखता है, ईरान युद्ध और महंगे कच्चे तेल के बीच 5 महीने में भारत की ग्रोथ स्टोरी की तस्वीर बदली। पंजाब के अमृतसर में ASI की गोली मारकर हत्या, दैनिक ट्रिब्यून के पहले पन्ने पर है। ड्यूटी के दौरान दो हमलावरों ने वारदात को दिया अंजाम। विपक्षी दलों ने आम आदमी पार्टी सरकार को निशाना बनाते हुए राज्य में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। 17 साल में सबसे सूखा रहा 2026 का मानसून। राजस्थान पत्रिका के अनुसार अलनीनो के लगातार बढ़ते असर से देश में 346 जिले प्रभावित, खरीफ उत्पादन घटने की आशंका।
0: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट, 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता में भारत पहले स्थान पर। रिजर्व बैंक ने कहा, भारत में सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में वर्ष 2025-26 में वार्षिक आधार पर 8.2% की वृद्धि। और 20वें एशियाई खेलों का शुभारंभ आज से जापान में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस।

2020 में रोजगार मेले में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। आइए सुनते हैं इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन।

0: की चॉइस देने का भी प्रावधान उपलब्ध करवा दिया गया है। आंसर की को एक्सेस दिया गया है और ग्रीवेंस पोर्टल पर दर्ज कराई जा सकती है। यदि यूपीएससी की बात करें तो दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए सेंटर ऑफ चॉइस का प्रावधान इंट्रोड्यूस किया गया है और प्रतिभा सेतु यानी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के वो उम्मीदवार जो आखिरी चरण में किसी कारण असफल रहे उन्हें अपनी अनुकूलता से जॉब का ऑप्शन मिल सके। मिशन कर्मयोगी यानी नई जिम्मेवारी ग्रहण करने से पहले अपने आप को प्रशिक्षित किया जा सके, इसके लिए अभी तक 1,72,00,000 यूजर्स अपना नाम रजिस्टर करवा चुके हैं। पब्लिक एग्जामिनेशंस में मैल प्रैक्टिसेस पर अंकुश लगाने हेतु सन 2024 में प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट लाया गया और इसी वर्ष 2026 में उसका अमेंडमेंट। प्रधानमंत्री जी, आपके द्वारा शुरू किए गए रोजगार मेला के सफल प्रयोग से प्रेरित होकर के अनेकों राज्य सरकारों ने भी अपने अपने प्रदेशों में इस प्रकार के आयोजन प्रारंभ किए हैं। पिछले मात्र 1.5-2 वर्षों के भीतर 6,79,000 से अधिक प्रदेश स्तर की नियुक्तियां हुई हैं। राजस्थान, बिहार, असम, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड, उड़ीसा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा आदि राज्यों में गत 11 वर्षों में आपने रोजगार एवं जीविका के अनेकों विकल्प उपलब्ध करवाए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज हिंदुस्तान के नौजवान में एस्पिरेशनल सर्ज देखने को मिलता है। स्टार्टअप्स की संख्या 350 से बढ़कर के 2.5 लाख तक पहुंच गई, परंतु महत्वपूर्ण बात यह कि 50% से अधिक स्टार्टअप का ताल्लुक छोटे शहरों और कस्बों से है, जबकि 45% से अधिक वुमेन लेड स्टार्टअप्स है। इसी प्रकार मुद्रा योजना के तहत 66% से अधिक लाभार्थी महिलाएं, स्वनिधि योजना के तहत 50,63,000 लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर्स और विश्वकर्मा योजना के तहत अपने हुनर से अपनी जीविका कमाने हेतु 2,72,00,000 याचिकाएं प्राप्त हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री जी, आज भी हर बार की तरह आपके द्वारा बटन दबाते ही एक साथ देश भर में 91,000 से अधिक नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे, जिसमें से 50% लगभग 26,000 का ताल्लुक फाइनेंस एंड रेवेन्यू सर्विसेज के साथ है। अंत में प्रधानमंत्री जी, केवल इतना ही कहना है कि आज जबकि हर योजना की कल्पना विकसित भारत के लक्ष्य को सामने रखकर की जाती है, तो ये एक सुखद संयोग है कि आज ये नौजवान जो आपके हाथों से नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, ये सरकारी नौकरी के माध्यम से राष्ट्र सेवा का संकल्प एक ऐसे समय में ले रहे हैं जबकि सारा देश सेवा संकल्प अभियान मना रहा है। इनके संकल्प को सिद्धि प्राप्त हो, भारतवर्ष को शीर्ष स्थान प्राप्त हो, इसी कामना से आपका एक बार पुनः धन्यवाद।
1: धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आज पूरा विश्व तेजी से विकसित होते भारत की ओर उम्मीद और गौरव से देख रहा है। आज का ये रोजगार मेला भारत की विकास यात्रा में युवाओं के लिए नए अवसरों का संदेश लेकर आया है। इस अवसर पर प्रस्तुत है एक लघु फिल्म।
2: दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती बड़ी इकॉनमी भारत। दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती बड़ी इकॉनमी भारत। बीते 12 वर्षों से लगातार अपने सपनों, संकल्पों और सामर्थ्य के दम पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारत की हर उपलब्धि के केंद्र में है भारत के युवा और उनकी अटूट संकल्प शक्ति। और जब राष्ट्र सेवा का अवसर स्वयं सरकार में हो, तब संकल्प मिशन मोड में बदलता है। यही कारण है कि रोजगार मेला आज पारदर्शी, समयबद्ध भर्ती और युवा सशक्तिकरण का एक राष्ट्रीय अभियान बन चुका है। इसी कड़ी में एक बार फिर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। चयनित युवा गृह मंत्रालय, राजस्व विभाग।

0: भारतीय रेल, स्वास्थ्य विभाग, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, डाक विभाग तथा केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में विभिन्न पदों पर सेवाएं देंगे। देश के कोने कोने से चुने गए ये युवा बनेंगे कहीं सुरक्षा की ढाल, कहीं स्वास्थ्य का भरोसा, कहीं बैंकिंग की गति, कहीं शिक्षा की नींव, कहीं रेल की रफ्तार, तो कहीं राजस्व प्रशासन के माध्यम से देश की ताकत। ये सभी कर्मयोगी बनेंगे विकसित भारत 2047 के अहम भागीदार।
1: विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है।
0: टेक्नोलॉजी आधारित सिस्टम, निष्पक्ष चयन और मातृभाषा में परीक्षा की सुविधा ने हर क्षेत्र और आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले युवाओं के लिए अवसरों का दायरा बढ़ा दिया है। साथ ही सरकारी नौकरी में चयनित युवा आज के समय की जरूरत के हिसाब से बेहतर भूमिका निभा सके, इसीलिए मिशन कर्मयोगी के आई गॉट प्लेटफॉर्म पर 1.7 करोड़ से अधिक लर्नर्स और 8 करोड़ से अधिक कोर्स कम्प्लीशंस हर कर्मचारी को फ्यूचर रेडी, सक्षम और सिटीजन सेंट्रिक बना रहे हैं। भारत सरकार का हर नया कर्मयोगी ईमानदारी, दक्षता और सेवा के साथ विकसित भारत की आर्थिक नींव को और मजबूती देगा, क्योंकि जब युवा कर्तव्य से जुड़ता है राष्ट्र निर्माण की शक्ति और बढ़ती है। रोजगार मेला, नियुक्ति से राष्ट्र निर्माण तक।
2: अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों के वितरण के इस अभियान का शुभारंभ करें।

0: मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि रोजगार मेले के इस अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें।
1: मेरे प्यारे युवा साथियों, देश में त्योहारों का समय शुरू हो चुका है। इन खुशियों के बीच आज का दिन हजारों परिवारों के जीवन में एक नई खुशी लेकर आया है। आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए आज नियुक्ति पत्र जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, आज आप जिस मुकाम पर पहुंचे हैं उसके पीछे आपकी मेहनत तो है ही, साथ ही आपके माता पिता और आपके परिवारजनों की भी तपस्या है। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जीवन की इस नई शुरुआत के लिए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का। इसमें आप जैसे युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। सरकार में रहते हुए आपको हर वो निर्णय लेना है जो विकसित भारत के अभियान को, आत्मनिर्भर भारत के अभियान को निरंतर सशक्त करे। युवा होने के नाते विशेष तौर पर अन्य युवाओं के प्रति आपकी विशेष जिम्मेदारी है। आज आप देख रहे हैं हमारे युवाओं के टैलेंट और स्किल्स ने पूरी दुनिया का भरोसा जीता है। दुनिया को हमारे इनोवेटर्स, हमारे एंटरप्रेन्योर्स और हमारी युवा शक्ति से बहुत उम्मीदें हैं। अभी कुछ दिन पहले ही ब्रिक्स समिट संपन्न हुई। भारत का प्रयास रहा है कि ब्रिक्स कोऑपरेशन केवल सरकारों तक सीमित न रहे। हमारे एंटरप्रेन्योर्स, हमारे किसान, हमारी महिलाएं, हमारे युवा, हर कोई इस पार्टनरशिप का सक्रिय भागीदार बने। इसी सोच के साथ ब्रिक्स कनेक्ट और ब्रिक्स एमएसएमई कोऑपरेशन पोर्टल की भी पहल की गई है। साथियों, भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स एफटीए हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट्स से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं, नए मार्केट्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है। साथियों, बीते वर्षों में भारत सरकार का निरंतर जोर युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने पर रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, या अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देने का प्रयास। हमारी कोशिश है कि युवाओं की पढ़ाई और उनकी स्किल्स बदलती इकोनॉमी की जरूरतों के साथ चले। जैसे एक उदाहरण है पीएम सेतु। इस योजना के माध्यम से 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से 1,000 सरकारी आईटीआईज को आधुनिक बनाया जा रहा है। इसमें इंडस्ट्री की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की गई है। साथियों, भारत के युवाओं के सामर्थ्य की एक और तस्वीर हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम में दिखाई देती है। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और भारत की स्टार्टअप स्टोरी अब केवल बड़े शहरों की कहानी नहीं है। आज करीब आधे रिकॉग्नाइज स्टार्टअप टीयर टू और टीयर थ्री शहरों में है। यानी आज गांव, कस्बे और छोटे शहर का युवा भी भारत की नई इकोनॉमी में अपनी भूमिका बड़ी बना रहा है। छोटे शहरों के हमारे युवा अपने आइडियाज पर काम कर रहे हैं, नई कंपनीज बना रहे हैं और अपने साथ दूसरे युवाओं के लिए भी रोजगार के नए अवसर तैयार कर रहे हैं। साथियों, हमारा प्रयास है कि प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार के नए अवसर तेजी से बढ़े। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की गई है। इस योजना पर करीब 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस योजना की मदद से करीब 2 करोड़ युवाओं को पहली बार वर्क फोर्स का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। सरकार द्वारा इस योजना के तहत पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं का 15,000 रुपए तक का इंसेंटिव भी दिया जा रहा है। नए रोजगार पैदा करने वाले

आज भारत तेजी से ग्रो करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही में भारत की ग्रोथ रेट 7.8% रही है। इन्वेस्टमेंट में करीब 12% की बढ़ोतरी हुई है। रेटिंग एजेंसियां भारत की रेटिंग सुधार रही है और ये प्रगति ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया अनेक अनिश्चितताओं से गुजर रही है। भारत की इस ग्रोथ के पीछे बीते वर्षों के रिफॉर्म्स का बड़ा योगदान है। आपको अपने कार्यकाल में निरंतर रिफॉर्म्स को और गति देनी है। टैक्स और कंप्लायंसेस को सरल बनाना हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना हो, एजुकेशन और स्किलिंग में रिफॉर्म हो या नए सेक्टर्स को इनोवेशन के लिए खोलना हो या ईज ऑफ लिविंग की बात हो, हर स्तर पर देश में रिफॉर्म एक्सप्रेस का लगातार फुल स्पीड में चलना जरूरी है। और सरकारी कर्मचारी होने के नाते वर्तमान और आने वाले वर्षों में इसमें आप सभी की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। साथियों, मैंने कुछ दिन पहले कहा था, सूरज हमारा हो समंदर भी हमारा हो, सूरज हमारा हो समंदर भी हमारा हो, नाव हमारी हो नाविक भी हमारा हो, लहरों पर विजय लिखे वो हौसला हमारा हो। आज भारत का युवा इसी हौसले के साथ आगे बढ़ रहा है। अब आप सभी की भारत सरकार में रहते हुए ये जिम्मेदारी है कि देश के युवाओं की आकांक्षाओं को समझते हुए आप अपने काम को बखूबी निभाएं। मेरा फिर आग्रह होगा, आपका हर निर्णय, हर फाइल पर किया गया सिग्नेचर युवा एस्पिरेशंस को आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए। आपको अपने कार्यकाल में देखना होगा युवाओं के रास्ते की बाधाएं हटे, उनके आइडियाज को आगे बढ़ाने का अवसर मिले, इनोवेशन से इन्वेस्टमेंट बढ़े और इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट के नए अवसर बने। साथियों, अब आप स्वयं सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बनना जा रहे हैं, इसलिए आपका प्रयास हो कि जिन परेशानियों से आप गुजरे हैं या जिन परेशानियों से आपके माता पिता को गुजरना पड़ा है, उनसे दूसरे युवाओं को न गुजरना पड़े। जो तकलीफें आपके मां बाप ने सही है, जो तकलीफें कभी आपको सहनी पड़ी है, वो अब हमारे देश के किसी नागरिक को सहनी न पड़े, ये काम आपको सरकारी व्यवस्था में आते ही करना चाहिए। साथियों, आज देश में हर क्षेत्र में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। आप लगातार सीखते हुए यहां तक पहुंचे हैं, अब यहां से निरंतर सीखते रहने की एक नई यात्रा शुरू हो रही है। आपको लगातार अपनी स्किल्स को बेहतर करना है, नई टेक्नोलॉजी और नए सिस्टम को समझना है। मिशन कर्मयोगी इसी उद्देश्य को पूरा करने में आपकी मदद करता है। आई गॉड कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर आज 1,70,00,000 से अधिक सरकारी कर्मचारी जुड़ चुके हैं और आप जैसे नए साथियों के लिए कर्मयोगी प्रारंभ को विशेष रूप से तैयार किया गया है। आप जितना खुद को बेहतर बनाएंगे, उतना ही बेहतर देश के नागरिकों की सेवा कर पाएंगे। साथियों, आपको एक और बात हमेशा याद रखनी है, सरकार की असली ताकत देश के नागरिकों का विश्वास होता है। आप किसी भी मंत्रालय में हो, किसी भी विभाग में हो, आपका

0: किसी न किसी रूप में देश के सामान्य नागरिक के जीवन को छुएगा। किसी बुजुर्ग की पेंशन आपके काम से आगे बढ़ेगी, किसी विद्यार्थी की स्कॉलरशिप आपकी जिम्मेदारी से जुड़ी होगी, किसी किसान को मिलने वाली सुविधा आपके डिपार्टमेंट से हो जाती होगी। हो सकता है किसी नागरिक के लिए आप ही सरकार का चेहरा हो। आपका व्यवहार, आपकी संवेदनशीलता, आपकी एफिशिएंसी, आपकी ईमानदारी, इन सबसे तय होगा कि उस नागरिक का सरकार के साथ अनुभव कैसा रहता है। इसलिए साथियों, सरकारी सेवा में हमारा मंत्र होना चाहिए, नागरिक देवो भव, नागरिक देवो भव, नागरिक की सेवा राष्ट्र की सेवा है। आपकी सफलता तब और बड़ी होगी जब आपके काम से किसी नागरिक का जीवन आसान होगा। मुझे विश्वास है आप जहां भी रहेंगे, जिस भी विभाग में रहेंगे, कर्तव्य और सेवा भाव से अपने दायित्व को निभाते रहेंगे। मैं एक बार फिर आप सभी को बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी है। अभी आप सुन रहे थे 20वें रोजगार मेले के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन।
2: मैंने

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि इसके लिए करीब 1,00,000 करोड़ रुपए के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की गई है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हुए हैं।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है।
0: इससे पहले नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है। श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत अन्य देशों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है।
1: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
0: रेलवे ने सोलापुर डिवीजन के 7 स्टेशनों पर 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत मध्य रेलवे के मोहोल, मुंधेवाड़ी, बाले, सोलापुर, होटगी जंक्शन, होटगी ए कैबिन, शाहबाद और वाड़ी जंक्शन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नलिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी और देशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को सुगम बनाएगी। उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 से अधिक रूट किलोमीटर पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। दक्षिण तट रेलवे के 73 किलोमीटर लंबे सावल्यापुरम गुंटूर खंड पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन सिस्टम के उन्नयन के लिए 142 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस खंड को 25 किलोवाल्ट की एक यूनिट से 25 किलोवाल्ट की दो यूनिट के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। वहीं पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवरब्रिज के निर्माण के लिए भी 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है।

0: भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल को बाढ़ त्रासदी से उबरने में सहायता के लिए राहत सामग्री ले गया ये वायुसेना का 9वां विमान था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। पिछले महीने नेपाल में भीषण बाढ़ में जानमाल का व्यापक नुकसान हुआ था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव में 3 बड़े पद जीते। एबीवीपी के यश डबास अध्यक्ष चुने गए, जबकि रिया छावड़ी सचिव और लक्ष्य राज सिंह संयुक्त सचिव बने। निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन उपाध्यक्ष पद पर विजयी रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने डूसू चुनाव में एबीवीपी की जीत पर बधाई दी है। एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आज जापान के आईची नागोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्य भारतीय दल की अगुवाई की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youths in various government organizations at the 20th Rozgar Mela this afternoon through video conferencing. Speaking on the occasion, Mr. Modi said in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with the skills and opportunities needed to prepare for the future.
2: Aaj desh ke 51,000 se adhik yuvaon ko sarkari seva ke liye niyukti patra mil rahe hain. Main aap sabhi yuva saathiyon ko aur aapke parivar janon ko bahut bahut badhai deta hoon. Aaj aap sabhi ek aise samay mein Bharat sarkar se jude hain जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
1: Prime Minister Modi said the government is also working to rapidly expand employment opportunities in the private sector. He said with this objective, the Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana has been launched with an outlay of around 1 lakh crore rupees. The scheme is expected to enable nearly 2 crore young people to enter the workforce for the first time. The Prime Minister said India has signed free trade agreements with nearly 40 countries in the past few years, which is opening new doors of opportunity for the country's youth. He said such trade agreements pave the way for new partnerships and markets for the country's entrepreneurs and create new career possibilities for the youth. Prime Minister Modi said India is the world's third largest startup ecosystem today.
2: Bharat aaj duniya ka teesra sabse bada startup ecosystem hai. और भारत की स्टार्टअप स्टोरी अब केवल बड़े शहरों की कहानी नहीं है। आज करीब आधे रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप टीयर टू और टीयर थ्री शहरों में है। यानी आज गांव, कस्बे और छोटे शहर का युवा भी भारत की नई इकोनॉमी में अपनी भूमिका बड़ी बना रहा है।
1: India today dispatched a fresh tranche of 11 tons of relief material to Nepal, including medicines, forensic supplies, tents, hygiene kits, sleeping bags and other essential supplies. The External Affairs Ministry said the relief material has been handed over to the Nepali side. This was the 9th Indian Air Force plane carrying relief material to support Nepal's recovery. In a social media post, External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar said India continues to support Nepal's recovery. Nepal faced devastating floods last month, disrupting life and property. Prime Minister Narendra Modi has expressed condolences over the loss of lives due to a mishap in Madhya Pradesh's Agar Malwa district. In a social media post, the Prime Minister extended condolences to those who have lost their loved ones. Mr. Modi also announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased. The injured would be given an amount of 50,000 rupees. 8 people, including 3 children, died after a car carrying devotees was swept away.

0: మల్మడే ఫ్రెండ్స్, మీరంతా ఇప్పుడు న్యూస్ అని హిందీ వింటారు.
1: ఆకాశవాణి సమాచార్ కి సాత్ మే కిరణ్ శర్మ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है. श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए. इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है.
2: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं. मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ. आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है.
2: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं. ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं. इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं.
1: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए. रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है. रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी. इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है. इसके साथ ही पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज

0: के निर्माण के लिए 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। नागालैंड के चुमोकेमिटा में नागा यूनाइटेड विलेज में 2 दिन का पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन आज सम्पन्न हुआ। इस सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के नीति निर्माता, शिक्षाविद और प्रशासक शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने पर चर्चा की। ये सम्मेलन नागालैंड सरकार ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर आयोजित किया था। इसका विषय था एनईपी 2020 को लागू करना, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परिकल्पना, चुनौतियों और अवसर। समापन समारोह में आज त्रिपुरा के उच्च शिक्षा पंचायत और सामान्य प्रशासन मंत्री किशोर बर्मन ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वाग्ले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। आज नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉक्टर वाग्ले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की। एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आज जापान के आईची नागोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के भारतीय दल को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और खेलों में शानदार सफलता हासिल करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youths in various government organizations at the 20th Rozgar Mela through video conferencing. Speaking on the occasion, Mr. Modi emphasized the pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India. He said that in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with the skills and opportunities needed to prepare for the future.
2: मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
1: Prime Minister Modi said the government is also working to rapidly expand employment opportunities in the private sector. He said with this objective, the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana has been launched with an outlay of around 1 lakh crore rupees. The scheme is expected to enable nearly 2 crore young people to enter the workforce for the first time. The Ministry of Rural Development will begin training nearly 34,000 rural youth under Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojana 2.0 across most state and union territories from next month. Preparedness for the commencement of training batches was reviewed with 14 states and UTs including Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, West Bengal, Himachal Pradesh and Tamil Nadu in the first phase. The ministry said over 3,57,000 rural youth will be trained by the 31st of December next year. Indian Railways has approved provision of Kavach version 4.0 on 607.7 route kilometers of the Lucknow division of Northeastern Railway. The cost of the project is over 250 crore rupees. The Railways Ministry said that the approved project will extend Kavach 4.0 coverage across the identified balance sections of the division,